सुहेला हुए जन्म सुहेला सब जाए मिलो सतगुर को मेरी जिंदड़ी है जो हर हर ना दृढ़ा वैरा हर जब नया खिन ठिलना की गई मेरी जिंदड़ी है मत के जापे सहा आवे केला

तिन लिया अंचल लाए, तिन लिया अंचल लाए। गुरु प्यारी सत्संग जी बाणी दे कत अनुसार आप जी ने सुनिया, जैसे रहन पुराने उठ सल सें प्रभात, क्या तुरता गिरस्त स्यों सब फुलना की बागात। ये जीवन सफलता होना जे पंजा प्यारियां कोल जाके रहत समझ के नाम दृढ़ करा के संगत च बह के नाम जप के जीवन ता सफल होना। इसे प्रथाएं इस समागम विच अमृत संचार रात नूं है। पंजां प्यारियां ने तुठना है, पंजां प्यारियां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान होके, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होके अपना बनाउणगे। जिन्हां जिन्हां ने गुरु साहब का बनना है, गुरु साहब नूं अपना बनाउणा है, आप तैयार वर तैयार होके रात नूं रकाबगंज साहिब शाम नूं 4 बजे रकाबगंज साहिब जी तैयार वर तैयार होके पंजां ककारां दे धारनी बन के उत्थे पहुंच जाओ ते तरले पा के ये दात लै लो जी। रात नूं रैन सवाई हुई है रकाबगंज साहिब जी, आप जी सारिआं ने पहुंच के लाहे लैणे जी।

नानक एक करे अरदास बिसर नाही पूर्ण गुण दास। नानक एक करे अरदास बिसर नाही पूर्ण गुण दास। दर्शन प्यासी दिन सरा चित बो अंदर नीत कूल कपट गुर मिलिया। वाहिगुरु सो कोटाल गुरु सेविये एन साय सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जनो मरण दुख जाए। होवे सिफत समझे नुर वारसों कुरसों चटिए जठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म भी कटिए। सज्जन सचा पातशाह विसर शाहां दे साहब जिस पास बैठे हैं सो ही है सबना दास साहब। सचा पातशाह विसर साहां दे साहो जिस पास बैठे हैं सो ही है सबना दास साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। सोरठ महला तीजा घर पहला ते तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुगरार लै हर जियो हर नाख समार पचाया भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुगरार लै तुद राख लै हर जियो हर नाख समार पचाया गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो मन मखो भारों भलाया हर जी ए तेरी बड़ियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरण आई रहाओ भगतां नूं जम जोहे न सके काल न नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरनी लागी गुरके सह सवाई मन मुखां नूं प्रतीतन आवी अंतर लोभ सवाओ गुरमुख हिरदे शब्द न भेद्यो हर नाम न लागा भाओ कूट कावट पाज लै जासी मनमुख फीका लाओ भगतां बिच आप बरतदा प्रभ जी भगते ही चूं जाता माया मोह सब लोका तेरी तो इको पुरख बधाता हों मैं मार मनसा मने समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करे प्रभ तिनके अचिंत काम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन बसिया सब काज सवार नहारा उन्हां की रीस करे सो बिगुचे जिन हर प्रा है रखवारा बिन सतगुर सेवे क्यों ना पाया मानवख भोक मुए बिलाए आवे जावे ठोर न पावे दुख मैं दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़े जे अनेक कर्म करे अधकाई बाद पड़े ता बाद बखाने बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर सच्ची जिस बाणी पर छूटे गुरसन आई जन हर मन वसिया थे दर साचे सचियारा उन्हां सोभा जुग जुग होई कोय ना मेटन हारा नानक तिन के सद बलहारे जन हर राखिया और तारा जन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा उन्हां दे सोभा जुग जुग होई कोय ना मेटन हारा नानक तन के सद बलहारे जन हार राखिया उर तारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोठ महला तीजा घर पहला ते तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुखरार प्रजाद प्रहलाद जन तुखरा तुद राख लियो हर जियो हर नाख सुमार पचाया गुरमुखां नू प्रतीत है हर जियो मनमुख भरम भलाया हर जी ए तेरी बड़ियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरण आई
ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀਰ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਉੱਚੀ ਪੀਰ ਸੱਚ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸੁਸਿਆਣਪ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਾਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਤੁਰੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਬੜਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਬਣਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਰਜੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿੱਥੇ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾਵੇ ਕੋਟ ਹੱਥ ਖਤ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਹੇ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਕਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ।

रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार मूर्ख आप गणाइंदे मर जमे हुए खुआर नानक रतना सोलहे जिस गुरमुख लगे प्यार सदा सदा नाम उचरे हर नामे नित बिहार कृपा करे जे अपनी ता हर रखा उर तार महला तीजा सतगुर की सेवना कीनिया हर नाम लगो प्यार मत तुम जानो जीव दे ओ आप मारे करतार ओमे बड़ा रोग है पाए दूजे कर्म कमाए नानक मन मुख जीव दया मुए हर बिसरिया दुख पाए पौड़े जिस अंतर हिरदा सोद जिन तिस जन को शब्द नमस्कारी जिस अंदर नाम निदान है ते जन को हूं बलिहारी जिस अंदर बुद्ध विवेक है हर नाम मरारी सो सतगुर सबना का मित है सब तिसे प्यारी सब आत्म राम पसारिया गुर बुद्ध विचारी श्लोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना बिछू में कर्म कमाए बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावे मर जमे आवे जाहे बिन बिन सतगुर सेवे क्या फिका बोलना नाम न बसे मन माए नानक बिन सतगुर सेवे जम पर बधे मारियन मोहि काले उठ जाए महला पहला जालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा बिसरे नानक साई पली प्रीत जित साहिब सेती पत रहे पौड़े हरे को दाता सेविये हरे कते आइये हरे को दाता मंगिये मन चिंदिया पाइये जे दूजे पासों मंगिए ता लाज मराइए जिन सेविया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाइए नानक तिन विटों बारिया जिन आंदिन हिरदे हर नाम ते आइए श्लोक महला तीजा भगत जना को आप तूठा मेर प्यारा आप हिलियन जन लाए पातशाही भगत जना नू को दितियन सिर छत सच्चा हर बनाए सदा सुखिये निर्मले सतगुर की कार कमाए राजे हुए नाकिये पेड़ मरे फिर जुन्नी पाए नानक बिन आवे नक्की बड़ी फिरे सुबा मूल न पाए महला तीजा सुन सिखिये साधन आयो जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुर सेविये नाम मन बसे बिचों परम पा पागे जिहा सतगुर नू जाने ते हो वै ता सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले बड़ियाए हर दर सोहण आगे पौड़ी गुरसिखा मन हर प्रीत है गुर पूजन आव है हर नाम बणजे रंग स्यों ला हर नाम लै जावै गुरसिखा के मुख उजले हर दर गै भाव है गुर सतगुर बोलो हर नाम का बड़ भागी सिख गुण सांझ करावै तिन गुर सिखा को हों बारिया जो बहिंदिया उठदिया हर नाम ते आवै श्लोक महला तीजा नानक नाम निदान है गुरमुख पाया जाए मनमुख कर हुंदी बथ न जाननी अंधे भूख मुए बलाए महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम पा पागी नानक गुरमुख सदा सुख पावे आंदिन हर बिरागी पौड़ी छे गुरसख तन तन है जिन गुर पदेश सुनिया हर कन्नी ने गुर सतगुर नाम दिड़ाया तिन हुमे दुबदा पन्नी बिन हर नावे को मित्र नाही विचार डिठा हर जन्नी जिन गुरसिखा को हर संतोष है तिनी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम ते आएंदे तिन चढ़ी च बगन बन्नी श्लोक महला तीजा मनमुख कैर कुरूप है बिन नावे नक नाहे अंदिन तंदे व्यापिया सुपने पी सुख नाहे नानक गुरमुख होवे ता उबरे नाहे तबद्धे दुख सहाए महला तीजा गुरमुख सदा दर सोने गुर का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे पाई गुरमुख हर भगत हर आप लाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ।

खोई सोरठ महला चौथा। घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आपे आप वरतदा प्यारा आपे आप पाओ, मन जारा जग आवै प्यारा आपे साचा शाह। आपे वणज वपारिया प्यारा आपे सच विसा। जप मन हर हर नाम सला, गुरु कृपा ते पाए प्यारे अमृत गम तारहा। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख आपे माप मुख बोले आप मुहा। आपे उजड़ पाइंदा प्यारा आप विखाले रा। आपे सब आवै प्यारा आपे वे परवा। आपे आव पाइंदा प्यारा श्री आपे तंदड़े ला। आप कराए साख दी प्यारा आप मारे मर जाओ। आपे पतन पातनी प्यारा आपे पार लंगाओ। आपे सागर बोता प्यारा गुरु खेव छाप चलाओ। आपे चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखै।

महला चौथा चौथा आपेक अंडज जे रज से तुत्वज आपे खंड आपे सबलोए आपे सूत आपे बोमणिया कर सकति जगत परोए आपे सूतार प्यारा सूद खिंच टहटीरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवरना कोए सतगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख जो जोए रहाओ आपे जल थल सबत है प्यारा प्रव्या पे करे सो होए सपना रिजुग समाज दा प्यारा दूजा अवरना कोए आपे खीर खलाएं दा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आपे निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाइंदा प्यारा आप करे सो होए आपे अलखन लखिए प्यारा आप लुखावे सोए आपे गहरे गंभीर है प्यारा तिह जे उड़िया वरना कोए सब कड़े आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरख सब सोए नानक गुप वर्तदा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोरठ महला चौथा आपे सब आपे प्यारा आपे था भू थापे आपे वेख गसदा प्यारा कर चूज वेखे प्रवे आपे आपे ता वन तिन सब है प्यारा आपे गुरमुख जापे जब मन हर हर नाम रस थापे अमृत नाम हर समीठा गुर शब्दी चख जापे रहाओ आपे तीर तुरड़ा प्यारा आप तरे प्रवे आपे आपे जाल बताएंदा प्यारा सब जग मछली हरे आपे आप अपुलना फुली प्यारा अवरण दूजा जापे आपे सिंगी नाद है प्यारा तुने आव जाए आपे आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापे आपे सदगुरु आप है चेला उपदेश करे प्रवे आपे आपे नाव पाइंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे हीर से आपे आपे आप सलाइन दा प्यारा जन नानक हर स्त्रापे सूरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजे प्रम्या पे तोल तुलाए आपे शाह आपे वणजारा आपे वणज कराए आपे धरती साजन प्यारे पीछे टंक चढ़ाए मेरे मन हर हर दै सुख पाए हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरे मीठा लाए रहा आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुकुमरत दा प्यारा जल माटी बंद रखाए आपे ही पाओ पाइंदा प्यारा बन बकरी शी हंडाए आपे कास्ट आप हर प्यारा विच कास्ट गन रखाए आपे ही आवरतदा प्यारा पैग नसके जलाए आपे मार जिवाइंदा प्यारा सा लेंदे सब लवाए आपे तान दिवान है प्यारा आपे कारे लाए

कहु न सिजई बिन नावे पत जाय अष्टपदी। दस पस्तूले पासे पावे बस्कार कूट पावे पी ना दे दस पी हिर ले तो मूढ़ा को का करे। जिस ठाकुर सुना ही चारा ताको की जैसा नमस्कारा जाके मन लागा परम बीठा सर्व सुखता हुवन उठा। जिस जाने अपना हुक्म मनाया सर्व तोक नानक तिन पाया अग्न सा अपनी दे रास खात पीत परते आनंद उलास। अपनी अमान कश भाषा ले ज्ञानी मन रोस करे अपनी पतिता भी खोवे बौर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्त सागे राके प्रभ की आज्ञा माने माथे उसते चौकन करे निहाल। सौ नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया की हित सर पर होत जान अनेत। बिरकी छाया सुरंग रावे ओ बिन से ओ मन विस्तावे जूद इसे सो चालन हार लपटरे उदे अंदर डार। मटाव सो जुलावे ने ताको अतना वे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानका अपले लाई मिथ्या तन तन कटंब समाया मिथ्या हमे ममता माया। मिथ्या राज उमन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेकस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आप सुप्रकर्त गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जीवै नानक जप जप जीवै हर कै चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर कोहरै मिथ्या नेत्र पेक्त पात्री रुपाद मिथ्या रसना पूजन स्वाद। मिथ्या चरण परपकार को तावै मिथ्या मन पर लुभ लुभावै मिथ्या तनि परपकारा मिथ्या भासरित विकारा। भिन बूझै मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम ले। बिरथी सात की आरजा साचना कहु तु सूचा बिरथा नाम बना तने अंध मुकाओ तां कि दुर्गंध है। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाये मेक बिना जो कीती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम जो किरपन केंद्रार्थ धाम। धन धन ते जंजे कट वस्यार नाओ ताके नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कश अवर कुमावत मानी प्रीत मुखो गन लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेक न काहू भीन। अवर उपदेश आप न करे आव जावत जन्म अमरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तर संसार।

ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय धाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता।

नेमुक ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगुण निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूपण अपेख नेत्र साधु गिटाल संसंग हेत करण सुने कहूं की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंज दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होए न कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तने अंतर सिमरण गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानक ऊ बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल ते आगे दुष्ट का संग मन ते विंसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खुवे तिस भगवती की मत उत्तम हुए भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प बिशन परीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं सोद राम नाम सारस पीवे उस पंडित कैब दे जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सो कम जाने अस्तूल चौवरणा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरणा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोय कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र को तारे सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगा काहू जकुत किते न पाए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस न द्री आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संख्या तुम

तैसा हर कैसा सोग सदानंद तै नाही वियोग तैसा सुवर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिख फाटी तैसा मान तैसा अवमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरुकैय जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिजत कर राखे तैसा तिन नाम आपे करण करावण जोग प्रभाव सोई फुण होग पसरु आ भोयन अंतरंग लखन जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता।

बिहारी कई कोड़ पै तीर्थवासी कई कोड़ बण परमै उदासे कई कोड़ वेद के स्रोते कई कोड़ तपी सर होते कई कोड़ आत्म ध्यान धार कई कोड़ कव का विचार कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोड़ पै अभिमाने कई कोट अंध अज्ञाने कई कोड़ किरपण कठोर कई कोड़ अभिगातम ने कौर कई कोड़ पर दुखना कर कई कोड़ पर कई कोड़ पर द्रव कोहिर कई कोड़ पर दुखना कर कई कोड़ माया शर्माए कई कोड़ परदेश ब्रह्माए जिजित लाभ तित तलगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट से जाति जोगी कई कोट पाराज रस भोगी कई कोट पंखी सर्प हो पाए कई कोट पाथर बिरखण बिजाए कई कोट पौन पानी बसंतर कई कोट देसो मंडल कई कोट ससिर सुरण खेतर कई कोट देव दान जर सिर छातर सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत हरसासत कई कोट किए चरदंस कई कोट किरतन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी वै कई कोट जाक नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नीर सब हूं ते दूर नानक आप अल्प त्रय परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर सुर निवासी कई कोट जन्म जीव मर कई कोट बोजुनी फिर कई कोट बैठते खाए कई कोट कल तक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जह जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभु कह आते कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतन लव लागे कई कोट प्रभु को खोजंत आत्म पार ब्रह्म लहंत कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभु अविनाश कई कोट मंग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड

दूसरे नहीं कोए नानक तिस बल हारण जल थल महल सोए। अष्टपदी करण करावन करण जोग ज्योतिष पावे सोई होग। किन मैं था भूतापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा।

पत्रकार कहो नाम हर वत, ए तन सांचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस धन को चार कुंट उठ धावै, सो धन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित पाछे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक पावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अब खद लाए। सरम निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगाह परवान। मन पर बोधर हर के नाए, जैद तावत आवे ठाए। ताको बिगना लागे कोए, जाके रिदे बसे हर सोए। कलता थी ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अबनासी, को नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन मरे सो काचो काचा। आवा गवन मिठे प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव। यों रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनक पाव न छूटन हारे, सिमरत सासत वेद बिचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन वांछत नानक फल पाए। सांगना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटुंब अर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पसारी। जैन दिए तिथे बुझे ना बेगाना, ना बसार नानक पछताना। गुर की मातू ले आने, भगत बिना ब डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हुए तुम्हारो चीत। चरण कमर राखो मन माहे, जन्म जन्म के कलबिक जाहे। आप जपहो अवरा नाम जपावहो, सुनत कहत रहत कर पावो। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरे उतरस मैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल। होए अचिंत बसे सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावे सच तना। हर पूंछी सांच करो बेहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक एक। एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन त जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरे हो प्रभ व्याप। अनक बसथार एक ते पै, एक अराध पराशत गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रावधान, कर कृपा देवो हर नाम। सा जना की मांगो तूर, पार ब्राह्मिर सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोई। जिन चाखिया छे जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। परे सरन आन सब त्याग,

सत्संग जी, ये जिहड़ी रचना है धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, बड़ी कमाल की रचना है, जिस विच सारा महाराज जी ने जंग का माहौल, युद्ध किदां लड़े जाते ने, सो वह सारा इंदे विच शस्त्रां का जिक्र किया है। नाल ही महाराज जी ने कहा, लख नगारे वजन आमो सामने, राक्ष रणो ना भजन रोहे रोहले, सिंहां वांगू गजन सभे सूरमे, तन तन कैबर छड़न दुर्गा सामने। सो ये जिहड़ी सारी महाराज जी की रचना है, सारी जोश भरी रचना है। सो सारे नाल आपां किरपा करके महाराज जी की उस्तत विच असीं ये शब्द गा रहे हाँ। सो सारे नाल किरपा करो जी।

हे रब हे सच हे करुणा निज मेरी अभय बेनती सुन लीजै और ना मांगत हूँ तुम ते कुछ चाहत हूँ चित में सोच कीजै सतरन सो अत ही रण पीतर जूझ मरु तू साच पती जय अंत सहारा तजै जग माहे कृपा कर श्याम एह वर दीजै दूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कत मरे प्रभु ना छाडे खेत। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ सज्जन सच्चा पातशाह फिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसाहो।

लोक आदि पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। छमरंत संत सर्वतर रमणंग नानक अगन आसन जगदीश्वर है। आदि पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। समरंत संत सर्वतर रमणंग

उठ भगती लगा, उठ भगती लगा यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जीहिया यार वे एक डूम एक चाड़े।